Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: संगीत 106.1 FM, This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है. म्यूजिक.

आए भी अकेला इनटू दिस वर्ल्ड वी हैव कम अलोन और जाए भी अकेला एंड इन अ सिमिलर मैनर व्हेन वी टेक आवर एग्जिट वी शैल लीव अलोन. दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला. व्हेन वी डू टेक स्टॉक फॉर आवर लाइव्स वी रियलाइज दैट दिस लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट विजिट टू अ मेला. दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स नो वन इज योर्स ऑल्दो एवरीवन लिव्स आई एम स्टिल अलोन. आए भी अकेला और जाए भी अकेला.